फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश है सराखों पर. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और आज गाने की फरमाइश आई है प्रेम शेजू की तरफ से इस गाने के लिए.

और ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए ना तो ये गाना बहुत काम की चीज है, ना मुंह छुपा के जियो। चलो फिर प्रेम जी की फरमाइश पर ये मोटिवेटेड और प्रेम भरा गाना अभी हम एंजॉय करते हैं। आपकी भी दोस्तों कुछ फरमाइश होगी तो हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080, इट्स व्हाट्सएप नंबर।

मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन गवर्नमेंट, आपके लिए तो स्पेशल बधाई होनी ही चाहिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। और आप सोच रहे होंगे कि यार ये थोड़ा सर्किट तो नहीं है ना, फजूल में किसी को भी बधाई क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई यू नो व्हाट, अपने गवर्नमेंट ने ना तो फिर से एक बार महंगाई की डायन छोड़ दी है। एंड देखते देखते जो एक चीज से हमारे घर का चूल्हा जलता था, उसी के दाम 3 महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ गए। मैं बात कर रहा हूँ गैस सिलेंडर की। जी हाँ, गैस सिलेंडर अब 29 रुपए महंगा हो चुका है। यू नो व्हाट, 2 महीने पहले ना तकरीबन 913 रुपए में गैस सिलेंडर आता था, अब वो आएगा 942 रुपए, यानी कि 29 रुपए से महंगा हो चुका है सिलेंडर। और इसके पहले 7 मार्च को तकरीबन 60 रुपए महंगा ये हो गया था, उसके बाद अब जून महीने में 29 रुपए महंगा सिलेंडर हो चुका है। तो इसी वजह से मैंने कहा ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन गवर्नमेंट, आप तो रेट बढ़ाती है लेकिन ये महंगाई की डायन ना तो आम आदमी के जेब काट लेती है। और बस गैस सिलेंडर ही नहीं, पिछले 1 महीने के अंदर तकरीबन 7 रुपए प्रति लीटर महंगा पेट्रोल और डीजल भी हो चुका है। अब आम आदमी करे तो करे क्या, म्हणजे इकडे आड तिकडे वीर अशी परिस्थिती सध्या झालेली आहे। कॉन्ग्रेचुलेशन गवर्नमेंट, दाम बढाई दिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टे ट्यून।

हेलो भैया, आपके पास कैश है क्या? कैश मतलब ये सवाल आजकल बहुत पूछा जाता है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान एंड शो शुरू है अपना ऑल इज वेल। लेकिन अपने शहर में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। अगर आपको कैश निकालना है ATM से तो भाई, अगर कैश मिल गया तो आप बहुत लकी हो, मैं ऐसा समझूंगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने के अंदर अपने शहर के ATM पूरे तरीके से खाली खाली और खाली नजर आ रहे हैं। यू नो व्हाट, अपने शहर में ना तो हर दिन 10 करोड़ का कैश लगता है जो कि पूरे शहर के ATM के अंदर डालना जरूरी है, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने के अंदर 1.5 करोड़ रुपए कैश हर दिन अपने ATM में जा रहा है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही है। अब आप सवाल उठाओगे कि यार डिजिटल जमाना है तो कैश कौन यूज करता है भाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो आज भी कैश यूज करते हैं और कुछ पेमेंट्स ना तो कैश के जरिए ही दिए जाते हैं, तो इसी वजह से कैश की जरूरत है। लेकिन पिछले 2 से 3 महीने के अंदर हर एक शहर का ATM खाली खाली और खाली नजर आ रहा है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 200 और 500 के नोट आना थोड़े कम हो चुके। तो अगर आप भी कैश निकालने जा रहे हो तो भाई बेस्ट ऑफ लक, कैश मिल गया तो बहुत बधाई हो, नहीं मिला तो फिर किसी और ATM में चेक कीजिएगा, वहां पर भी नहीं मिला तो किसी और ATM में चेक कीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान को फिलहाल 2 से 3 ATM तो घूमना ही पड़ रहा है अपने शहर के कैश के लिए। तो आप बताइएगा कि कौन से ATM में कैश अवेलेबल है, जरा DM करके इंस्टा पर RJ अदनान इस पेज पर, ताकि हमें पता चले और वही हम लोगों को बता पाए। तो याद से बताइए और सुनते रहिए।

ऑनलाइन स्कैम होता है, ऑफलाइन स्कैम होता है, मोबाइल्स का स्कैम होता है, बैंकिंग का स्कैम होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्कैम्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैसों का भी स्कैम होता है जिसके ऊपर वेब सीरीज मूवीज आती है और किताबें छपती है। लेकिन हमने छत्रपति संभाजी नगर में एक और स्कैम शुरू है जिसके बारे में आई डोंट नो कि आपको कितना पता है, या फिर पता होने के बावजूद भी आप लोगों ने कभी उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं होगा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। और इस स्कैम के शिकार ना तो कहीं ना कहीं आप लोग और मैं भी हो चुका हूँ। मैं हुआ हूँ इस वजह से मैं इस पर बात कर रहा हूँ। और एक ऐसा स्कैम है जो कि कहाँ चलता है पता है, अपने रेलवे स्टेशन के ऊपर चलता है। अब ये स्कैम क्या है, थोड़ा जोर लगाइएगा आपके दिमाग पर और ज़रा सोचिएगा कि यार स्टेशन पर जाने के बाद ऐसा कौन सा स्कैम हुआ यार मेरे साथ जो मुझे याद नहीं या हमने देख कर इग्नोर किया। ज़रा सोचिए इस बारे में, हुआ तो है, जितने भी लोग स्टेशन जाते ना रेलवे स्टेशन उनके साथ कभी ना कभी ये स्कैम हुआ ही है। क्या है वो स्कैम, किस तरीके से है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

अपने छत्रपति संभाजीनगर में एक ऐसा स्कैम शुरू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और कुछ ही देर पहले मैंने आपको पूछा था कि वो स्कैम कौन सा है, जरा आप मुझे बताइएगा या थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइएगा, उस स्कैम के बारे में कुछ आपको पता चलता है क्या। तो देखो यार, वो स्कैम थोड़ा सिंपल लगता है लेकिन है उतना ही खराब, क्योंकि है तो एक स्कैम ही ना। मैं बात कर रहा हूँ अपने छत्रपति संभाजीनगर के पार्किंग स्कैम के बारे में। अपने रेलवे स्टेशन के बाहर जो पार्किंग है उसकी ऑफिशियली फीस कितनी पता है? वहां पर गाड़ी पार्क करने की ₹15 आप वहां पर पे कीजिएगा और अपनी गाड़ी पार्क कीजिएगा, बरोबर। और आजकल ना तो वहां पर फीस कितनी वसूल की जा रही है पार्किंग की? ₹20 फीस वहां पर वसूल की जा रही है। कल ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मुझे बाद में ख्याल आया, यार मैंने 2 दिन पहले वहां पर आया था स्टेशन के ऊपर, तब मैंने ₹15 दिए थे और आज ये मुझे ₹20 क्यों मांग रहे। तो फिर मैंने जाके उनको पूछा कि भाई ऐसा क्या है, एक दिन आप ₹15 लेते हो, एक दिन आप ₹20 लेते हो। तो उसका क्या कहना था पता है जवाब? उसका कहना था कि अगर आपने ऑनलाइन पे किया ना तो आपको ₹15 देना पड़ेंगे, अगर ऑफलाइन पे कर रहे हो तो आपको ₹20 देना पड़ेंगे। मतलब ये ऐसा कैसा स्कैम है? मैं भी शॉक बन गया, ऐसा कैसा भाई। तो फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है तो मुझे पावती दे दे। वो कह रहा था कि यार पावती तो नहीं है। फिर मुझे समझ में आया भाई ये तो पूरी तरीके से काला बाजारी शुरू है, यानी कि एक तरीके का स्कैम। वैसे ये चीज आपके साथ भी हुई है क्या, जरा बताइए मुझे। DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर कॉल कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और हाँ, व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा। स्टे ट्यून।

हमारे पास छुट्टी नहीं है, इसलिए हमने 20 रुपए वसूल किया। एंड इम्पोर्टेंट बात ऐसी भी लिखी है कि छुट्टी ना होने के बाद वो पार्किंग वाले ने उनसे उन्हें बताई नहीं थी और 5 रुपए एक्स्ट्रा वसूल किए थे। सो ऐसे कुछ ये स्कैम अपने शहर में हो रहे हैं और सवाल ये उठता कि यार इस स्कैम के बारे में किसी को पता है या नहीं, ऑफिशियल जो अथॉरिटीज है उनको भी इस बारे में पता है या उस 5 रुपए में हर किसी का हिस्सा है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार बस 5 रुपए की बात है ना भाई, एक इंसान की नहीं, दिन में से वहां पर हजारों गाड़ियां लगते हैं, हर गाड़ी के पीछे 5 रुपए ऐसे वसूल करना मतलब कितना हो रहा है। एंड इसकी ऑफिशियली ना कोई पावती है ना कोई बिल है जो आपको मिलता है पार्किंग के पैसे पे करने के बाद, तो भाई गड़बड़ तो है पूरी तरीके से। खैर क्या ही बोले अब, स्टे ट्यून्ड।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है।

0: है उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
0: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
2: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
3: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
2: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
3: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
4: Attention future researchers and innovators.
5: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 2027. The LLB nantar kara LLM Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyaskram.
4: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
5: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000।
6: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए, तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
7: अगर प्रिया ऐकलं का, 16 मे पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे।
8: हो, आणि मी तर स्वगणना केली आहे। प्रगणक आले की त्यांना फक्त माझा ACID नंबर देणार।
7: आणि ज्यांनी स्वगणना केलेली नाही
8: त्यांना प्रगणकांच्या मोबाईल ऍप मधील प्रश्नांची उत्तरे देऊन माहिती द्यायची आहे। प्रगणकांना सहकार्य करूया आणि जबाबदार नागरिक बनूया।
7: जनगणना प्रगणकांना सहकार्य करा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित।

0: पार्किंग वाला स्कैम शुरू हुए अपने छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन पर। यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। बंदे का नाम अदनान और आप भी इस स्कैम के शिकार हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं और पार्किंग में ना तो तकरीबन 20 रुपए वो पे करते हैं और ऑफिशियली रेट है बस 15 रुपए। सो मेरा सिंपल से कुछ ऐसे सवाल है, अगर वहां पर 15 रुपए रेट है वो 20 रुपए वसूल करते हैं, रेलवे अथॉरिटी को पता होगा या नहीं होगा? मुझे तो लगता है होगा ही, क्योंकि भाई कट तो सबका ही निकलता होगा। या फिर और दूसरी एक बात, जब ये पैसे वसूल करते हैं हमसे, इसकी ऑफिशियली हमें पावती मिलना जरूरी है जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि पार्किंग फीस कितनी है, कितने घंटे के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर मिलता नहीं है। तीसरी बात है कि अगर हम गाड़ी वहां पर पार्क कर रहे हैं तो गाड़ी पार्किंग के लिए अच्छा शेल्टर भी होना चाहिए, वहां पर कुछ है नहीं, बस खुले में हमारी गाड़ी वहां पर पार्क होती है। खैर ये सब कुछ हो या ना हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि 5 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के वसूल किए जा रहे हैं। अब ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग वही सोचेंगे जो मैंने कुछ देर पहले बताया था, 5 रुपए की तो बात है यार, उसमें क्या होता है? पार्किंग 24 घंटे शुरू होती है और 24 घंटे में तकरीबन 1000 गाड़ी तो वहां पर पार्क होती होगी ना, या उससे कम या उससे ज्यादा भी समझो। हर एक गाड़ी से 5 रुपए एक्स्ट्रा वसूल करने के बाद हर दिन उन्हें 5000 रुपए ब्लैक में मिल रहे हैं। और बात बस 5 रुपए की नहीं है, बात है रूल्स और रेगुलेशंस की, बात है ऑफिशियल वहां पर पावती मिलने की और बात है 15 रुपए पार्किंग के वसूल करने की ही। चाहे फिर आप 1 रुपए एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हो या फिर 5 रुपए एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हो, वो स्कैम यानी कि गलत चीज है और है ही। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता हो ना तो एक उसका वीडियो निकाल के हम तक पहुंचाइए या फिर हमें डीएम कीजिएगा, कॉल करके बताइए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। इस पर हम अपने शो में और भी बातें करेंगे और ऑफिशियल जो अथॉरिटी है उनसे बात करेंगे इस स्कैम के बारे में और जितना हो सके उतना स्कैम बंद करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप भी हमें साथ दीजिएगा और बाकी तो सुनते रहिएगा आरजे अदनान के साथ।
1: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन किंवा जपानी शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक, संस्कृत, मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय,
2: तर मग एमजीएम युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
1: अवेलेबल कोर्सेस बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू अँड संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव्ह रायटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जपानीज, पर्शियन अँड ट्रान्सलेशन, यासोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध।
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
1: किंवा कॉल करा 9763679245, 9665353515 और 9371714259।
2: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट एमजीएम कैंपस एन6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM। कांतारा का ये गाना मेल सिंगर ने गाया है या फीमेल सिंगर ने?
1: कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है।
0: सुनकर लगता है कि ये किसी फीमेल सिंगर की वॉइस होगी, लेकिन नहीं, ये एक मेल सिंगर की वेंकटेश डीसी। उनकी नेचुरल वॉइस हाई पीच है और उस पीच में गाना वो कंफर्टेबल समझते हैं, लेकिन इस गाने में थोड़ा चेंज है और साथ ही साथ उनकी टोन बहुत सॉफ्ट है और इस गाने में उन्होंने यूज की है हेड वॉइस और मिक्स वॉइस, इसी वजह से उनकी आवाज पतली, हल्की और फीमेल जैसी साउंड करती है। तो ये कन्फ्यूजन सिंगर के वजह से नहीं बल्कि सिंगर की यूनिक वोकल रेंज, सिंगिंग टेक्निक और म्यूजिक प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथरीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीनता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. तसेच LLB नंतर करा LLM Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000।
7: अगं प्रिया, ऐकलं का, 16 मे पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झालाय।
8: हो, आणि मी तर स्वगणना केली।

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. तसेच LLB नंतर करा LLM Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000।
7: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
8: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
7: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
8: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जा।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: अगर प्रिया ऐकले का 16वे पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे
4: हो, आणि मी तर स्वगणना केली आहे। प्रगणक आले की त्यांना फक्त माझा ACID नंबर देणार,
3: आणि ज्यांनी स्वगणना केलेली नाही
4: त्यांना प्रगणकांच्या मोबाईल ऍप मधील प्रश्नांची उत्तरे देऊन माहिती द्यायची आहे। प्रगणकांना सहकार्य करूया आणि जबाबदार नागरिक बनूया।
3: जनगणना प्रगणकांना सहकार्य करा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित।
5: अटेंशन फ्युचर रिसर्चर्स अँड इनोव्हेटर्स,
6: MGM युनिव्हर्सिटी इज नाउ इन्व्हाइटिंग ऍप्लिकेशन फॉर PhD ऍडमिशन्स 2026 अँड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
5: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
6: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 अँड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: मिलकर भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं
2: MGM University, Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: अगर प्रिया ऐकले का 16 मे पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झालाय।
4: हो आणि मी तर स्वगणना केली आहे। प्रगणक आले की त्यांना फक्त माझा ACID नंबर देणार।
3: आणि ज्यांनी स्वगणना केलेली नाही
4: त्यांना प्रगणकांच्या मोबाईल ऍप मधील प्रश्नांची उत्तरे देऊन माहिती द्यायची आहे। प्रगणकांना सहकार्य करूया आणि जबाबदार नागरिक बनूया।
3: जनगणना प्रगणकांना सहकार्य करा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित।
5: अटेंशन फ्युचर रिसर्चर्स अँड इनोव्हेटर्स,
6: MGM युनिव्हर्सिटी इज नाउ इन्व्हायटिंग ऍप्लिकेशन फॉर PhD ऍडमिशन्स 2026 अँड 2027। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

0: सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा रहा होगा। पूरे दिन की भागदौड़, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बाद अब समय है थोड़ा रिलैक्स करने का, मुस्कुराने का और अपने लिए कुछ पल निकालने का। शाम का ये समय अपने आप में बहुत खास होता है। दिन धीरे धीरे ढलता है, मौसम में हल्की सी ठंडक घुल जाती है और मन भी सुकून की तलाश में होता है। ऐसे खूबसूरत पलों को और भी यादगार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं बेहतरीन गाने, दिलचस्प बातें और भरपूर मनोरंजन। अगर आप इस वक्त घर लौट रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ हैं, तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ जरूर बिताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी शाम और भी खुशनुमा बन जाए और तैयार हो जाइए अच्छी धुनों, सकारात्मक ऊर्जा और शानदार साथ के लिए। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखिए और खूबसूरत शाम का आनंद लीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। ऑफ कोर्स अब शुरुआत करते हैं आज के पहले शानदार गाने की। आप सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपकी शाम अच्छी बीत रही होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन के काम के बाद शरीर तो थक जाता है लेकिन दिमाग भी भारी सा महसूस होने लगता है। ऐसे में खुद को तरोताजा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक छोटी सी वॉक पर निकल जाओ। जी हाँ, सिर्फ 10 से 15 मिनट की सैर भी आपके मूड को बेहतर बना सकती है। घर के बाहर, पार्क में, सोसाइटी के आसपास या फिर किसी शांत सड़क पर थोड़ा टहलना आपको नई ऊर्जा दे सकता है। जब हम चलते हैं तो सिर्फ हमारे कदम ही नहीं बढ़ते बल्कि तनाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ताजी हवा, आसपास का माहौल, पेड़ों की हरियाली और शाम की हल्की ठंडक मन को सुकून देती है। कई बार जिन बातों को लेकर हम परेशान रहते हैं उनका समाधान भी ऐसी ही छोटी सी वॉक के दौरान ही मिलता है। तो अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं और मौका मिले तो अपने लिए कुछ मिनट जरूर निकालिए। मोबाइल को थोड़ी देर के लिए जेब में रख दीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुलकर चलिए। यकीन मानिए, आपका मन और शरीर दोनों आपको थैंक यू कहेंगे। और अगर आप अभी कहीं सफर पर जा रहे हैं या घर पर आराम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी आवाज और शानदार गाने आपके साथ के लिए जरूर यहाँ पे है ताकि आपकी शाम और भी बनी रहे खूबसूरत। इसी एनर्जेटिक बातों के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ एनर्जेटिक गाने सुनते हैं। ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

शाम के समय अक्सर हमें हल्की फुल्की भूख लगने लगती है। ऐसे में हम में से कई लोग कुछ तला भुना या पैकेट वाले स्नैक्स खाने के सोचते हैं। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। लेकिन अगर आप स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना चाहते हैं तो एक बहुत ही आसान और शानदार ऑप्शन है मेरे पास, एक मुट्ठी मूंगफली मतलब शेंगदाने और ऑफ कोर्स गुड़। ये अगर साथ में मिला के खा लो ना यार, सुनने में भले ही ये साधारण लगे लेकिन ये जोड़ी स्वाद और पोषण दोनों का बेहतरीन मेल है। मूंगफली में प्रोटीन और अच्छे फैट होते हैं, जबकि गुड़ अपनी प्राकृतिक मिठास के लिए जाना जाता है। दोनों साथ में न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि शाम की छोटी भूख को भी अच्छे से शांत कर देते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे तैयार करने में कोई झंझट नहीं, बस एक मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा, न कोई लंबी तैयारी, न कोई अतिरिक्त खर्चा, देसी स्वादिष्ट और आसानी से उपलब्ध। तो अगली बार जब शाम को कुछ खाने का मन करे तो चिप्स या ज्यादा प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह इस देसी कॉम्बिनेशन को जरूर मौका दीजिए। हो सकता है ये आपकी नई पसंद बन जाए। और अब स्वाद और सेहत की इसी प्यारी सी बात के साथ समय हो गया है आगे बढ़ने का, शानदार गाने सुनने का। आप कहीं मत जाना, बस सुनते रहना MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
0: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
0: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
2: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़ाता, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
3: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ।
2: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
3: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर। अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
4: अटेंशन फ्यूचर रिसर्च।

0: प्यार जब अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो दिल की बात शब्दों से नहीं एहसासों से बयां होती है, और ऐसे ही गहरे जज्बातों को बहुत ही खूबसूरती से पेश करता है ये गाना। आप सुन रहे हैं एमजीएम 90.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आया तेरे दर पर दीवाना, ये वो गाना है जिसमें मोहब्बत की तड़प, इंतजार और अपने किसी खास के लिए सैक्रिफाइस साफ महसूस होता है। गाने के बोल दिल को छू लेते हैं और उसकी धुन सीधे दिल तक पहुंचती है। यही वजह है कि आज भी ये गाना प्रेमियों की मन पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। ये गाना मशहूर फिल्म वीर ज़ारा का हिस्सा है, एक ऐसी फिल्म जिसने प्रेम, त्याग और रिश्तों की खूबसूरती को बेहद ही सेंसिटिव तरीके से पर्दे पर उतारा है। इस गीत को सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी के दिल की पुकार संगीत बनकर हमारे सामने आ गई हो। अगर आपने कभी किसी का इंतजार किया है, किसी को दिल से चाहा है या किसी के लिए अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करना मुश्किल पाया है तो ये गाना आपको ज़रूर करीब लाएगा और आपकी मदद भी करेगा। तो आइए कुछ पल के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर चलते हैं और महसूस करते हैं कुछ वैसे ही सुनहरे गाने को, क्योंकि ऐसे गाने सुन के दिल को सुकून भी मिलता है और कहीं ना कहीं हिम्मत भी मिलती है आगे बढ़ने की। आप लोग कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: अपन इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन किंवा जापानी शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक, संस्कृत, मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय,
2: तर मग एमजीएम युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
1: अवेलेबल कोर्सेस BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू अँड संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम इन क्रिएटिव्ह रायटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन अँड ट्रान्सलेशन, या सोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध।
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
1: किंवा कॉल करा 9763679245, 9665353515 और 9371714259।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
2: ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhaji Nagar।

कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी बात कोई समझ ही नहीं रहा। वेलकम ऑन एमजी 90.8 एफएम, दिस इज आरजे मनीषा विद यू। और खासकर तब जब हम अपने माता पिता से कुछ कहना चाहते हैं और हमें महसूस होता है कि वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे, उस पल दिल में एक अकेलापन सा आ जाता है। लेकिन क्या सच में हम अकेले होते हैं? शायद नहीं। कई बार माता पिता हमारी बात को नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि वो अपने अनुभव और चिंताओं के आधार पर सोच रहे होते हैं। उनकी सोच और हमारी सोच के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, जिसे समझ और बातचीत से दूर किया जा सकता है। याद रखिए, हर परिवार में मतभेद होता है। हर बात पर सहमति होना जरूरी नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम हो या आप अकेले हो। आपके माता पिता शायद अपने तरीके से आपकी परवाह कर रहे होते हैं, भले ही उस समय आपको ऐसा महसूस न हो। अगर कभी दिल भारी लगे तो अपनी भावनाओं को मन में मत दबा कर रखिए, बजाय इसके भरोसेमंद व्यक्ति से साझा कीजिए। अपने दोस्तों, भाई बहनों या परिवार के किसी सदस्य से अपनी मन की बात जरूर कीजिए। कई बार अच्छी बातचीत से दिल का बोझ हल्का होता है, और अगली बार अगर आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आए तो उस ख्याल को किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी रिश्तों को बस थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य और थोड़ी समझ की ज़रूरत होती है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे गाने सुनते हैं। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

कहा जाता है कि अच्छे रिश्तों की नींव सिर्फ प्यार पर नहीं बल्कि एक दूसरे को सुनने पर भी टिकी होती है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। और जब माता पिता और बच्चों की रिश्तों की बात आए तो ये बात और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज के बच्चे एक अलग दुनिया में बड़े हो रहे हैं, उनके सपने, चुनौतियाँ, सोच पहले से काफ़ी अलग है। ऐसे में बच्चों को सिर्फ सलाह की नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उनकी बात ध्यान से सुने। कई बार बच्चे अपने मन की बात कहना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को साझा करना चाहते हैं या अपने सपनों के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगे कि उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा या लिया जा रहा तो धीरे धीरे वो चुप होने लगते हैं। माता पिता का बच्चों को सुनना सिर्फ उनकी बात सुन लेना नहीं है बल्कि उनकी भावनाओं को समझना भी है। जब बच्चे महसूस करते हैं कि घर में उनकी बात सुनी जाती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और परिवार के रिश्ते मजबूत बनते हैं। हर बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि उसके माता पिता सिर्फ उसके मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे लिसनर भी हैं, जैसे कि आप हमारे। तो आइए आज एक छोटा सा प्रयास करें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की सुनिए और अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश कीजिए पूरे दिल से। हो सकता है वो कुछ ऐसा कहना चाहते हो जो आपके रिश्तों को और भी खूबसूरत बना दे। इसी प्यारी से सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ अमेजिंग गाने सुनते हैं। ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

भी परिवार की असली ताकत सिर्फ एक साथ रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने में होती है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। क्योंकि जहां समझ होती है वहां रिश्तों में अपनापन, भरोसा और खुशियां अपने आप बढ़ने लगती है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। घर में माता पिता, बच्चे, भाई बहन सबके अपने विचार, पसंद और सपने होते हैं। ऐसे में कभी कभी मतभेद होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन रिश्ते तब मजबूत बनते हैं जब हम सिर्फ अपनी बात कहने की बजाय दूसरों की बात समझने की कोशिश भी करते हैं। कई बार छोटी सी गलतफहमी बड़ी दूरी का कारण बन जाती है। वही एक छोटी सी बातचीत, एक मुस्कान या किसी की बात को धैर्य से सुन लेना रिश्तों में फिर से मिठास घोल सकता है। परिवार वो जगह है जहां हमें बिना किसी शर्त के प्यार और साथ मिलता है। इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, समय निकालें और खुलकर बातचीत करें। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है और हर खुशी दोगुनी हो जाती है। तो दोस्तों, आज अपने परिवार के साथ कुछ पल जरूर बिताइए, उनकी बातें सुनिए, अपनी बातों को साझा कीजिए और रिश्तों को और भी मजबूत बनाइए। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर परिवार के साथ बिताए हुए उन छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ शानदार गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिड़चिड़, मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. The seats LLB nantar kara LLM, Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyasakram.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000।
7: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
8: अगर प्रिया ऐकलं का, 16 मे पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झालाय।
9: हो, आणि मी तर स्वगणना केली आहे। प्रगणक आले की त्यांना फक्त माझा ACID नंबर देणार।
8: आणि ज्यांनी स्वगणना केलेली नाही
9: त्यांना प्रगणकांच्या मोबाईल ऍप मधील प्रश्नांची उत्तरे देऊन माहिती द्यायची आहे। प्रगणकांना सहकार्य करूया आणि जबाबदार नागरिक बनूया।
8: जनगणना प्रगणकांना सहकार्य करा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित।

देखते आज की ये खूबसूरत शाम और हमारा साथ यही तक पहुंच गया है, जहां अब हम बोलेंगे अलविदा। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। उम्मीद है आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा। हमने साथ में बातें की, शानदार गीत सुने और कुछ ऐसे विचार साझा किए।

0: जो दिल को छू जाए। अगर आज के प्रोग्राम में आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाई हो, आपके दिन की थकान थोड़ी कम की हो, आपको कुछ अच्छे पल दिए हो, तो हमारा प्रयास सफल रहा। जिंदगी की भागदौड़ में अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपकी जिंदगी को खास बनाते हैं। छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और हर दिन का स्वागत एक नई उम्मीद के साथ कीजिए। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन याद रखिए, ये अलविदा हमेशा के लिए नहीं है। हम फिर मिलेंगे नई बातों, नई ऊर्जा और आपके मन पसंदीदा गानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के हर पल को खुशी से जीते रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा और आप सुन रहे थे एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: अपन इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन किंवा जापानी शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक, संस्कृत, मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय,
2: तर मग एमजीएम युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
1: अवेलेबल कोर्सेस बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू अँड संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन, या सोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध।
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
1: किंवा कॉल करा 9763671925, 9665353515 और 9371714259।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhaji नगर।

ऑनलाइन स्कैम होता है, ऑफलाइन स्कैम होता है, मोबाइल्स का स्कैम होता है, बैंकिंग का स्कैम होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्कैम से सबसे इम्पोर्टेंट बात पैसों का भी स्कैम होता है जिसके ऊपर वेब सीरीज मूवीज आती है और किताबें छपती है। लेकिन हमने छत्रपति संभाजीनगर में एक और स्कैम शुरू है जिसके बारे में आई डोंट नो कि आपको कितना पता है या फिर पता होने के बावजूद भी आप लोगों ने कभी उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। और इस स्कैम के शिकार ना तो कहीं ना कहीं आप लोग और मैं भी हो चुका हूँ। मैं हुआ हूँ इस वजह से मैं इस पर बात कर रहा हूँ। और एक ऐसा स्कैम है जो कि कहाँ चलता है पता है, अपने रेलवे स्टेशन के ऊपर चलता है। अब ये स्कैम क्या है थोड़ा जोर लगाइएगा आपके दिमाग पर और ज़रा सोचिएगा कि यार स्टेशन पे जाने के बाद ऐसा कौन सा स्कैम हुआ यार मेरे साथ जो मुझे याद नहीं या हमने देख कर इग्नोर किया, ज़रा सोचिए इस बारे में। हुआ तो है, जितने भी लोग स्टेशन जाते ना रेलवे स्टेशन उनके साथ कभी ना कभी स्कैम हुआ ही है। क्या है वो स्कैम, किस तरीके से है मैं बताऊंगा आपको लेकिन कुछ ही देर में। Stay tuned and enjoy this beautiful track only on MGM 90.8 FM.

अपने छत्रपति संभाजीनगर में एक ऐसा स्कैम शुरू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजी अदनान आपके साथ है। और कुछ ही देर पहले मैंने आपको पूछा था कि वो स्कैम कौन सा है, जरा आप मुझे बताइएगा या थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइएगा, उस स्कैम के बारे में कुछ आपको पता चलता है क्या। तो देखो यार, वो स्कैम थोड़ा सिंपल लगता है लेकिन है उतना ही खराब, क्योंकि है तो एक स्कैम ही ना। मैं बात कर रहा हूँ अपने छत्रपति संभाजीनगर के पार्किंग स्कैम के बारे में। अपने रेलवे स्टेशन के बाहर जो पार्किंग है उसकी ऑफिशियली फीस कितनी है पता है? वहां पर गाड़ी पार्क करने की ₹15 आप वहां पर पे कीजिएगा और अपनी गाड़ी पार्क कीजिएगा, बरोबर। और आजकल ना तो वहां पर फीस कितनी वसूल की जा रही है पार्किंग की? ₹20 फीस वहां पर वसूल की जा रही है। कल ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मुझे बाद में ख्याल आया यार, मैंने 2 दिन पहले वहां पर आया था स्टेशन के ऊपर, तब मैंने ₹15 दिए थे और आज ये मुझे ₹20 क्यों मांग रहे। तो फिर मैंने जाके उनको पूछा कि भाई ऐसा क्या है, एक दिन आप ₹15 लेते हो, एक दिन आप ₹20 लेते हो, तो उसका क्या कहना था पता है जवाब? उसका कहना था कि अगर आपने ऑनलाइन पे किया ना तो आपको ₹15 देना पड़ेंगे, अगर ऑफलाइन पे कर रहे हो तो आपको ₹20 देना पड़ेंगे। मतलब ये ऐसा कैसा स्कैम है? मैं भी शॉक, मैंने कहा ऐसा कैसा भाई। तो फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है तो मुझे पावती दे दे। वो कह रहा था कि यार पावती तो नहीं है। फिर मुझे समझ में आया भाई ये तो पूरी तरीके से काला बाजारी शुरू है, यानी कि एक तरीके का स्कैम। वैसे ये चीज आपके साथ भी हुई है क्या, जरा बताइए मुझे। DM कीजिए इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर कॉल कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और हाँ, व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा। स्टे ट्यून।

छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक बहुत बड़ा स्कैम शुरू है, दैट्स कॉल्ड पार्किंग वाला स्कैम। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और इस स्कैम के शिकार कहीं ना कहीं मैं और आप लोग हर दिन होते हर बार होते हैं। वैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि आपके साथ भी ये स्कैम हुआ है क्या, तो जरा बताइए। तो अभिलाष देशमुख जी का मुझे मैसेज आया है इंस्टा पर, वो कहते हैं कि यार उनके साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है। उन्होंने लिखा है कि जब वो रेलवे स्टेशन गए थे तो पार्किंग के उनसे 20 रुपए वसूल किए गए थे और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार किया गया है। और समीर काले जी का भी DM आया है हमें कि उन्होंने कहा है कि मेरे साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है और मुझसे भी उन्होंने 20 रुपए वसूल किए हैं। हालांकि बाद में मुझे पता चला कि 15 रुपए वहां पर फीस है, लेकिन जब मैं पूछने गया तो उनका कहना था कि हमारे पास छुट्टी नहीं है इसलिए हमने 20 रुपए वसूल किए। एंड इम्पोर्टेंट बात ऐसी भी लिखी है कि छुट्टी ना होने के बाद वो पार्किंग वाले ने उनसे उन्हें बताई नहीं थी और 5 रुपए एक्स्ट्रा वसूल किए थे। सो ऐसे कुछ स्कैम अपने शहर में हो रहे हैं और सवाल ये उठता कि यार इस स्कैम के बारे में किसी को पता है या नहीं, ऑफिशियल जो अथॉरिटीज है उनको भी इस बारे में पता है या उस 5 रुपए में हर किसी का हिस्सा है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार बस 5 रुपए की बात है ना भाई, एक इंसान की नहीं दिन में से वहां पर हजारों गाड़ियां लगते हैं, हर गाड़ी के पीछे 5 रुपए ऐसे वसूल करना मतलब कितना हो रहा है। एंड इसकी ऑफिशियली ना कोई पावती है ना कोई बिल है जो आपको मिलता है पार्किंग के पैसे पे करने के बाद, तो भाई गड़बड़ तो है पूरी तरीके से। खैर क्या ही बोले अब, स्टे ट्यून्ड।

0: पार्किंग वाला स्कैम शुरू हुए अपने छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन पर। यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। बंदे का नाम अदनान और आप भी इस स्कैम के शिकार हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं और पार्किंग में ना तो तकरीबन 20 रुपए वो पे करते हैं और ऑफिशियली रेट है बस 15 रुपए। सो मेरा सिंपल से कुछ ऐसे सवाल है, अगर वहां पर 15 रुपए रेट है वो 20 रुपए वसूल करते हैं, रेलवे अथॉरिटी को पता होगा या नहीं होगा? मुझे तो लगता है होगा ही, क्योंकि भाई कट तो सबका ही निकलता होगा। या फिर और दूसरी एक बात, जब पैसे वसूल करते हैं।
1: नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM। कांतारा का ये गाना मेल सिंगर ने गाया है या फीमेल सिंगर ने?
1: कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है।
0: सुनकर लगता है कि ये किसी फीमेल सिंगर की वॉइस होगी, लेकिन नहीं, ये एक मेल सिंगर की वेंकटेश डीसी।
1: अरुमद कल्लनु यडविदा मनुजना बेरलिन गायव।
0: उनकी नेचुरल वॉइस हाई पीच है और उस पीच में गाना वो कंफर्टेबल समझते हैं, लेकिन इस गाने में थोड़ा चेंज है और साथ ही साथ उनकी टोन बहुत सॉफ्ट है और इस गाने में उन्होंने यूज की है हेड वॉइस और मिक्स वॉइस, इसी वजह से उनकी आवाज पतली, हल्की और फीमेल जैसी साउंड करती है। तो ये कन्फ्यूजन सिंगर के वजह से नहीं बल्कि सिंगर की यूनिक वोकल रेंज, सिंगिंग टेक्निक और म्यूजिक प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है।

0: Adnasi Baat with RJ Adnan. Only on MGM 90.8 FM. Saath hai to baat hai.
1: एक लड़का था, नाम था राघव। रोज सुबह उठता, ऑफिस जाता, वापस आता और यही रूटीन चलता रहा। जिंदगी में सब कुछ ठीक था, सैलरी, जॉब, घर, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। सुकून, मुस्कान, वो मैं खुश हूँ वो वाली फीलिंग। एक दिन वीकेंड पे टेरिस पर बैठा था, एक 8 साल का बच्चा दिखा उसे, पतंग उड़ा रहा था। पतंग कट गई, बच्चा हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, कल फिर से उड़ा लूंगा। राघव उस पल बस एक अपनी सोच में डूब गया कि मैं एक पतंग कट जाने के बाद भी हंस नहीं सका यार, इस बच्चे की हंसी देखकर भी। और ये बच्चा एक पतंग कट जाने के बाद यही कह रहा है कि यार कल फिर से उड़ा लूंगा। उसी दिन ना तो उसने डिसाइड किया, यानी कि राघव ने, कि हर दिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालेगा, कुछ नया करेगा, बिना किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार किए। अब राघव वही काम करता है, वही जिंदगी है, लेकिन अब हर दिन थोड़ा सा जीता जरूर है, थोड़ा सा मुस्कुराता है और जब पतंग कटती है तो कहता है कल फिर से उड़ाएंगे। यहाँ पर बात पतंग की नहीं थी, समझदार हो समझिएगा। तो दोस्तों, जिंदगी बड़ी नहीं है, बस बड़ी प्यारी होनी चाहिए। और अगर कभी लगे कि सब रिपीट हो रहा है तो याद रखना, एक छोटी सी उड़ती हुई पतंग भी जिंदगी बदल सकती है। और एक जरूरी बात के हमें जिंदगी बस काटनी नहीं है।

0: 17th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन MGM यूनिवर्सिटी में होने जा रही है। आइए इस बारे में जानते हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर MGM यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर विलास सपकार जी से।
1: द 17th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट MGM यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 12th एंड 13th जून 2026। दिस कॉन्फ्रेंस इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड विद ब्रिजवाटर स्टेट यूनिवर्सिटी USA, हसन टू यूनिवर्सिटी मोरक्को, सिद्दी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी मोरक्को एंड टाफिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी टाफिला जॉर्डन। एक्सपर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब विल बी डेलिब्रेटिंग ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च इनोवेशन एंड पेडागॉजी एज वेल एट स्टार्टअप एंड इनोवेशंस फॉर यू। आई अपील ऑल स्टूडेंट फैकल्टी रिसर्चर्स स्कॉलर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस conference and take their knowledge to the next level of excellence.
0: 17th International Conference on Education 2026, 12th June and 13th June at MGM University, Chhatrapati Sambhajinagar.

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: अगर प्रिया ऐकलं का, 16 मे पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झालाय।
4: हो, आणि मी तर स्वगणना केली आहे। प्रगणक आले की त्यांना फक्त माझा ACID नंबर देणार।
3: आणि ज्यांनी स्वगणना केलेली नाही
4: त्यांना प्रगणकांच्या मोबाईल ऍप मधील प्रश्नांची उत्तरे देऊन माहिती द्यायची आहे। प्रगणकांना सहकार्य करूया आणि जबाबदार नागरिक बनूया।
3: जनगणना प्रगणकांना सहकार्य करा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित।
5: अटेंशन फ्युचर रिसर्चर्स अँड इनोव्हेटर्स,
6: MGM युनिव्हर्सिटी इज नाउ इन्व्हायटिंग ऍप्लिकेशन फॉर PhD ऍडमिशन्स 2026 अँड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
5: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
6: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 अँड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: अगर प्रिया ऐकले का 16 मे पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झालाय।
4: हो आणि मी तर स्वगणना केली आहे। प्रगणक आले की त्यांना फक्त माझा ACID नंबर देणार।
3: आणि ज्यांनी स्वगणना केलेली नाही
4: त्यांना प्रगणकांच्या मोबाईल ऍप मधील प्रश्नांची उत्तरे देऊन माहिती द्यायची आहे। प्रगणकांना सहकार्य करूया आणि जबाबदार नागरिक बनूया।
3: जनगणना प्रगणकांना सहकार्य करा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित।
5: अटेंशन फ्युचर रिसर्चर्स अँड इनोव्हेटर्स,
6: MGM युनिव्हर्सिटी इज नाउ इन्व्हायटिंग ऍप्लिकेशन फॉर PhD ऍडमिशन्स 2026 अँड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
5: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
6: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 अँड एंट्रन्स एक्झाम 23rd May 2026। Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906-7612-000.

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FM 90.8।

0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हज़ार